Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: दिल्ली शहर से जाना लायो लायो मसाला डाल
1: Ryan Star Ryan Star
2: Master Sunny
0: जाना जोर
2: Here comes vintage Devan